0: विगत एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजे को छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: बजे बजे ताकुते रेडियो ये बरी तो गए मैं भेजो रेडियो रे रेडियो मस्तंग दिरे तमु केरी समाचार खल खाई बो
1: हम दिने गम ये बे जुमले हम ते थेलो से भिजो
0: बर्थाली दे सेवा ग्रही मरकरी नेपाली कांग्रेस सेवा केन्द्रीय सदस्य रे लमजुम द काले आरक्षण कोठर बे केन्द्रीय सदस्य मे उम्मीदवार पि बरी प्लुले जाना नेता मे न्यू
2: के मे रेडियो मस्तंग द काले दिनै नानर बे 8 बजे खबे तमु के समाचार ने बरी आमलेत ओ

बेसी सहर मोबाइला घर घर पुनः बने भई लगे डीपीआर रहें तैयारी चलिए आर्थिक वर्ष रहो बने भाई सुरूला बात तैमू रायनासरी 75 वर्ष बैमृम वाठिया शिवा अवस्थारी थोमू थेरा हत्यालाबा सेवा अशंक लैम लमजुंगारी 32 आदिवासी जनजाति दिवस ऐन अवसर शुभकामना आदान प्रदान लैमरी मनैमु देहाम खलझाना महोत्सव दोसरो दिनारी राजु परियादे शिरा आलेला बेजोड़ प्रस्तुति मूलो नानर खबर तमुके मौसम फेटे तो खोबे लगे छिजे प्राविधिक ध्योति पेस्ते धन्यवाद पीमरी फेटे कछकेंगा खुशी माए तमुश्यो विदा किमु रेडियो मौसम 95 मेगा हर्ज दे इंटरनेट ऑनलाइन रेडियो मौसम .org।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सधैं भरिलाई।
1: के तपाईलाई कुनै स्वास्थ्य समस्या छ? त्यसो हो भने अनुभवी विशेषज्ञ डाक्टरबाट चेक जाँच गरी अनुभवी फार्मेसिस्टद्वारा औषधि वितरण गरिने प्रकाश फार्मेसीलाई सम्झनुहोस्।
2: हामी कहाँ अनुभवी विशेषज्ञ डाक्टरबाट चेक जाँच, अनुभवी फार्मेसिस्टद्वारा औषधि बिक्री वितरण तथा परामर्श, नेबुलाइजर सेवा, घाउ ड्रेसिङ, संगिनी सुई उपलब्ध छ भने घरैमै बसी फोन तथा अनलाइन मार्फत औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
1: नोट, हामी कहाँ जिल्ला बाहिरबाट विभिन्न रोगका विशेषज्ञ डाक्टरहरू आए निशुल्क चेक जाँच शिविर पनि सञ्चालन गरिन्छ।
2: प्रकाश घिमिरे, संचालक एवं प्रकाश फार्मेसी, बेसी सह नगरपालिका।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: मर्संगदेपिम 95 मेगाहर्ज 95 मेगाहर्ज

0: परामर्श सेवा समेत उपलब्ध छ।
1: विस्तृत जानकारीको लागि रोज नर्सरी बेसीसार नगरपालिका 2 पोहरा बेसी लमजुङ सम्पर्क 9856 46 244।
2: क्यों भविष्य में चिंता क्यों पारे मोइंदी आकी वा आंगी
3: नई इंश्योरेंस कियम
2: ओहो थदै मरिगा चील मुमै
3: ये भयो समस्या खै विषय पैनिक आंगी प्लान तम
2: लौ छैली मु बिषामी नै बिनी छ्याब बन्दिल परे
3: रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स चिन्ता आनी समाधान
2: छ्याब मि छ्याब रोजाई।
4: हेलो मर्सेङ्गे एफएम 95 मेगाहर्ज

0: तपाईको आफ्नै रेडियो रेडियो मर्चेन्जी एफएम 95 मेगाहर्ज। एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।